0: शस्त्र जिगर
1: गुड आवा सुवा जिगर है पर आईया भूत का गुड दे कुरान शाशार ती करो।